कि एक मर्द अगर है तो वो अपने पूरे घर का जो जिम्मेदार है और अपने मातहत जो घर में लोग हैं उनका वो मसूल है कि कभी कभी जो है घर में जब मसाइल पैदा होते हैं, इख्तलाफ होता है, दूरियां होती हैं, तो ठीक है, मुमकिन है कि रोल किसी का ज़्यादा हो, कभी किसी खातून का रोल ज़्यादा हो, लेकिन बहरहाल ज़िम्मेदारी ज़्यादा मर्द पे आती है कि वो क्यों कंट्रोल नहीं किया गया, क्योंकि कुरान ने जो है ये ज़िम्मेदारी मर्दों के हवाले की है। ख़वातीन के हवाले भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, लेकिन ये ज़िम्मेदारी पूरे घर को संभालने की ज़िम्मेदारी जो है ये मर्द की होती है, जिसमें सब लोग मिल के रोल अदा करें तो ज़्यादा अहम होता है। फिर ख़वातीन के लिए भी फरमाया कुरान ने कि वल मर्अतु रईयतुन फ़ी बैत ज़ौजिहा, एक खातून जो है अपने शौहर के घर में ज़िम्मेदार है, वह मसूलतुन अन रईयतिहा, और उनके उसके मातहत जो लोग उसके घर में बच्चे हैं उनकी तरबियत के लिए, उनके रहन सहन के लिए, वो भी जो है मसूल है। मसूल बार यानी जिससे सवाल किया जाए, सवाल किससे किया जाता है, उसी से जो किसी चीज़ का ज़िम्मेदार बनाया जाता है कि भाई ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अगर इसको सही अदा नहीं होगा तो आपसे सवाल किया जाएगा। कौन सवाल करेगा ये मसला अलग है, दुनिया सवाल करेगी, लोग सवाल करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा, ये अलग बहस है, अभी उस बहस को नहीं करते। वल खादिमु राइन फ़ी माल सैयदी व मसूलुन अन रायते, यहाँ तक की मिसाल दी कि हत्ता खादिम भी जो है खिदमत करने वाला जो घर में मौजूद है या कहीं भी खिदमत करने वाला है वो उसका ज़िम्मेदार है, जिस जो काम दिया गया, एक गेट कीपर का काम है तो वो वहाँ का ज़िम्मेदार है। फिर आखिर में ये कि फ़कुल्लकुम राइन व मसूलुन, ने फिर ताकीद हुई कि बस इस लिहाज से देखा जाए तो तुम में से हर एक जो है वो मसूल है और मसूल है और ज़िम्मेदार है अपने मातहत लोगों के लिए। इस लिहाज से अगर देखा जाए रहबर इनकलाब की ज़िंदगी को कि एक ऐसी ज़िम्मेदारी की ज़िंदगी जो नज़र आई है एक तूलानी मुद्दत, ये नहीं कि दो चार साल के लिए बल्कि एक लंबी मुद्दत में ज़िम्मेदारी की जो ज़िंदगी अपनाई है कबूल की है। अलबत्त कभी ये होता कि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो रही होती तो इंसान जो है अपने आप को उस ज़िम्मेदारी को लेने में हिचक रहा होता है, इस लिहाज से नहीं कि जो है हम ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते, बल्कि इस लिहाज से कि मुमकिन है कोई और भी इससे बेहतर ज़िम्मेदार हो सकता हो। यानी आम तौर से ये बीमारी होती है, ज़हनी बीमारी होती है, जब इंसान ख़ुद को सबसे बेहतर समझ रहा हो और ये समझ रहा हो कि हम ही सबसे बेहतर हैं तो ये ओहदा ये मनसब हमारे ही पास आना चाहिए। लेकिन नॉर्मल अगर इंसान है और ख़ास कर अगर उसके अंदर जो है खुजू पाया जाता है, हम्बलनेस पाई जाती है, इंसानी सिफात अखलाकी सिफात पाए जाते हैं, तो वो अपने आप को सबसे बेहतर नहीं समझेगा। लिहाजा सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जब रहबर इनकलाब को दी गई तो अपनी पूरी कोशिश की कि ये ज़िम्मेदारी ना लें, और ज़ाहिर है वो ज़िम्मेदारी कौन सी थी, वो ज़िम्मेदारी विलायत फ़कीह की थी, वली फ़कीह की हैसियत से, जिसको हम कहते हैं अभी सुप्रीम लीडर की हैसियत से एक मुल्क के, और ज़ाहिर है कि वो एक मुल्क में सुप्रीम लीडर होते हैं लेकिन वो ज़िम्मेदारी सिर्फ मुल्क की हद तक नहीं होती बल्कि और आगे तक होती, जो भी थोड़ा इंशाल्लाह इशारा किया जाएगा आपकी खिदमत में। तो वो वीडियोस मौजूद हैं, वो लोगों ने देखा भी है, आप चाहे तो देखें, अच्छा है वो मंदर जो है तकरीबन 37 साल पहले कि जब ये ज़िम्मेदारी रहबर इनकलाब को दी गई तो रहबर इनकलाब वो ज़िम्मेदारी किसी भी तरह से लेने को, सब देने के लिए तैयार थे लेकिन रहबर इनकलाब लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब ये सब ने ये तय किया, उस ज़माने में ये असम्बली जो होती थी, असम्बली आप एक्सपर्ट्स जिसको मजलिस खबरगान कहते हैं, कि जो रहबर का इंतखाब करती है, और इस असम्बली को इस मजलिस का इंतखाब अवाम डायरेक्ट करती है। बहुत सारी चीज़ें लोगों को नहीं मालूम है ईरान का जो सिस्टम है उसके बारे में, इंतखाबात का जो सिस्टम है उसके बारे में, लोग ये समझते हैं कि रहबर तो रहबर है तो फिर सब उसके सब उनके अंडर में, हाँ बिल्कुल अंडर में है, लेकिन रहबर का इंतखाब भी जो है वो एक मरहले से, जैसे हाँ इंडिया में जो है पार्लियामेंट के मेंबर्स का, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का इंतखाब आवाम करती है और ये पार्लियामेंट्स मेंबर इकट्ठा होकर जो है मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर उन सब का इंतखाब करते हैं। ईरान में सदर का इलेक्शन डायरेक्ट होता है और पार्लियामेंट मेंबर्स का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होता है, लेकिन रहबरी का इलेक्शन, रहबर का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, बल्कि चूंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का मसला है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का मसला होता है, हर एक इंतखाब करने में मुमकिन है कि डायरेक्ट इंतखाब में दूसरी चीज़ों के असरात हो जाएं।

लिहाजा इसका पूरा इलेक्शन होता है अवाम के दरमियान में, हर 8 साल में ये इलेक्शन होता है कि जहाँ पर अभी उस ज़माने में जब रहबर का इंतखाब हुआ तो 82 लोग थे, अभी 86 लोगों की तादाद है, मुमकिन है बाद में कुछ और भी बढ़ जाए आबादी वगैरह के लिहाज से। उनका अवाम इंतखाब करती है, फिर वो एक्सपर्ट्स जो है, एक्सपर्ट यानी वो इल्म के लिहाज से, दीन के लिहाज से, फ़िक्ह के लिहाज से और बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से उनकी एक्सपर्टीज़ को देखा जाता है, चेक किया जाता है, बाकायदा इम्तहान होता है इलेक्शन में खड़े होने के लिए। और ये बहुत अहम है कि इलेक्शन में जिनको ज़िम्मेदारियाँ मिलनी हैं वो हर एक आगे कोई ना खड़ा हो जाए कि कोई पैसे की बुनियाद पर इलेक्शन ना जीत जाए या झूठे प्रोपेगेंडे की बुनियाद पर ना जीत जाए, बल्कि कम से कम कुछ क्राइटेरिया मौजूद है जिसकी बुनियाद पर ये कम से कम मालूम हो कि इंसान ज़िम्मेदारी लेने के लायक है कि नहीं है। तो वो होता है और वो अवाम इलेक्शन करती है, अवाम वोट देती है, वो लोग जो है फिर रहबर को इंतखाब करते हैं। वो रहबर का इंतखाब मुमकिन है कि जैसे अभी जो है 37 साल बाद करना पड़ा तो किया, ख़तरा भी था, बम भी गिराया गया कुम्मे उस बिल्डिंग पर जहाँ पे उनको इकट्ठा होना था, वहाँ पे हमला किया गया, अभी तक उसके आसार मौजूद हैं, वहाँ पर टूटी हुई बिल्डिंग है, लेकिन उन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डाल के बहरहाल वो इंतखाब किया। और जब इंतखाब हुआ तो रहबर किसी भी तरह से ख़ुद लेने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब सब लोगों ने तय किया कि रहबरी के लिए और सुप्रीम लीडर के लिए सबसे मुनासिब जो है शख्सियत वो ख़ुद आयतुल्लाह खामेनेई रहमतुल्लाह अलैह की है, तो फिर ये ज़िम्मेदारी जब दी गई तो फिर उनका यही खुद जुमला है एक तकरीर में, गुफ्तगू में, एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि कुरान की आयत को पढ़ते हुए, जिसकी पहले भी इशारा किया जा चुका है किसी प्रोग्राम में, कि कुरान में 2 जगह ये बात मेंशन की गई है कि ज़िम्मेदारी को मज़बूती से लेना, खुज़िल किताब बिकुव्वा, जनाब मूसा के लिए है, जनाब यहिया के लिए है ये आयत, कि मज़बूती से जब कोई एक ज़िम्मेदारी, कोई एक काम दिया गया है तो उसको बहुत कुव्वत के साथ, बहुत ही मज़बूती के साथ लेना, वो रहबर इनकलाब ने लिया। और ये ना सिर्फ ये कि जो है वो 56 साल की उम्र में मसलन, या माफ़ कीजिएगा 65 साल की उम्र में ये ज़िम्मेदारी ली, वरना पहले भी जो है ज़िम्मेदाराना जो ज़िंदगी थी उससे 10 साल पहले इनकलाब आया, जब रहबर इनकलाब की उम्र ज़ाहिर है कि और भी बहुत कम थी, 49 साल की थी, 39 ईयर्स की थी जब इनकलाब आया, लेकिन इनकलाब के पहले 12 सालों में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जो है इनकलाब की अहम ज़िम्मेदारियों को अंजाम देते रहे, इमाम खुमैनी के सबसे नज़दीक तरीन लोगों में से रहबर इनकलाब एक थे, यानी शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे जो बुज़ुर्ग थे सिन के लिहाज से, और बहुत सारे उनकी शहीद मुताहरी की बहुत ही अज़मत थी, लेकिन बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ रहबर इनकलाब के अख्तियार में हुआ करती थी और वो ज़िम्मेदारियाँ लेते थे। और हत्ता इससे पहले भी, देखें ज़िम्मेदारी का एक नमूना मैं पेश करना चाहता हूँ जल्दी से, एक इंसान जिसके दिल में जाहिर है कि जो इंसान इतने बड़े मकाम तक पहुँचने वाला है तो एक बारगी तो कोई नहीं पहुँचता, कोई मुजज़ा नहीं होता, एक इंसान की ज़िंदगी के आगाज़ से उसकी अप्रोच क्या होती है, उसका मकसद क्या होता है, उसकी सोच क्या होती है, वो इंसान असल में जवानी में ये सारी चीज़ें, इब्तदाई जवानी में सारी चीज़ें तय करता है। और उसी नतीजे में रहबर इनकलाब ने अपना वतन छोड़ के, मशहद छोड़ के नजफ़ तक गए, नजफ़ पढ़ाई करने के लिए, जो उसका नजफ़ सबसे बड़ा मरकज़ था, शिया थियोलॉजी का सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो नजफ़ हुआ करता था, लेकिन जो एक बड़े मकसद के साथ जो है वहाँ पे पढ़ने गया हो और उसे ये एहसास हुआ कि मेरे वालिद बहुत ज़्यादा ज़यीफ़ हैं और बीमार हो चुके हैं, आँखों की बीनाई जा चुकी है, तो ये भी कह सकते थे कि ठीक है हमारे भाई बहन और भी तो हैं, वो कोई देख लेगा, कोई संभाल लेगा, आमतौर से ये बहाने मिल जाते हैं लोगों को कि हाँ ठीक है कोई और देख लेगा, अच्छा भाई बहन अगर नहीं है, बिज़ी हैं, तो किसी को किराए पे कर लेंगे, किसी को हायर कर लेंगे, किसी मसलन मेडिकल शख्स को हायर कर लेंगे, कि अलबत्ता उस ज़माने में ये सब इम्कानात नहीं थे, लेकिन आदमी को तो बहरहाल किया जा सकता था। लेकिन एक इंसान ने ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी ये समझी कि एक इतनी बड़ी पढ़ाई जो बहुत कम लोगों को उस ज़माने में नसीब होती थी कि वो अपने एक मुल्क से निकल कर दूसरे मुल्क जाके पढ़ लाओ, लेकिन एहसास ज़िम्मेदारी के तहत वो छोड़ के आ गए और पूरे वजूद से, पूरे दिल के साथ जो है अपने बाप के, अपने वालिद की, जबकि माँ भी थोड़ा बहुत उसके ज़ईफ़ा हो चुकी थी और बीमार थी, माँ बाप की खिदमत करने लगे। और अपनी किसी गुफ्तगू के दरमियान में, तकरीर में नहीं लेकिन आपसी गुफ्तगू के दरमियान में, ये मुझे बहुत पहले कभी सुना था कि रहबर इनकलाब ने फरमाया है कि उन खिदमात का बहुत ज़्यादा असर हमारी ज़िंदगी पर, यानी अल्लाह की तरफ से जो होता है ना, कि हम ये समझते हैं कि अरे हमारे माँ बाप हैं उनकी खिदमत करें या ना करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हम नहीं करते तो कोई और कर देगा, हम नहीं पहुंच पाते तो हमारे भाई बहन कर देंगे,

लोग जाके देख चुके हैं कि बिल्कुल बिल्कुल जो है वो जो फ्रंट लाइन में जहाँ पर संगर बनाया जाता है, मोर्चे बनाए जाते हैं, जहाँ पर वहीं पर उनकी शहादत हुई। तो ये ऐसे अफराद कहाँ से पैदा होते हैं? ऐसे अफराद उस ज़िम्मेदारी के तहत पैदा होते हैं कि जो एक इंसान में अल्लाह ने बुनियादी तौर पे करार दिए रखी हुई है कि इंसान की अगर एक असली तारीफ पूछी जाए ख़ुद कुरान से, तो कुरान जो है इंसान को सबसे, कुरान जो है इंसान की तारीफ़ करेगा, जो डिफ़ाइन करेगा कुरान, वो ये कि अलमाहा दिलेकुम या बनी आदमा अल्लाह ताबद शैतान, क्या मैंने तुमसे अहद नहीं लिया है, यानी क्या मैंने तुमसे ये ज़िम्मेदार नहीं बनाया। अहद यानी वही ज़िम्मेदार, ओहदा भी इसी से बना हुआ जो उर्दू में बोला जाता है, ओहदा, ओहदा भी जो है ज़िम्मेदारी। आम तौर से लोग समझते हैं ओहदा यानी मनसब, ओहदा यानी चलो मुबारकबाद देने के लिए, ओहदा यानी लूटने का सामान फराहम कर दिया, ओहदा यानी अब जो है अपने एतबार से अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाना। लेकिन ये दुनिया के ओहदे हो सकते हैं, इस्लामी तौर पर कुरानी निगाह से देखा जाए तो अहद या ओहदा ये जो है एक ज़िम्मेदारी है, और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी यही होती है जब किसी इंसान को कोई ओहदा दिया जाता है। कुरान ने इंसान को पैदा होने से पहले ही से हर इंसान को कहा कि मैंने तुझसे कुछ अहद लिया हुआ है, अल्लाह से इंसान का अहद है। ये सूरह यासीन में फरमाया, फिर सूरह अहज़ाब में फरमाया कि मिनल मोमिनीन रिजाल सदकु मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस अहद को पूरा कर देते हैं जो अल्लाह से उन्होंने किया हुआ है, अहद को सच्चा साबित कर देते हैं। फिर कुरान की बहुत सारी आयतें इस मतलब पे गवाही देती हैं कि असल इंसान की तारीफ़ की जाए कि इंसान क्या है, तो इंसान की एक सबसे ज़्यादा कुरानी तारीफ़ ये होगी कि इंसान वो है कि जो एक ज़िम्मेदार मौजूद है। दूसरे जानवर भी किसी हद तक ज़िम्मेदार हैं, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत कम है। एक दरख्त की ज़िम्मेदारी है कि वो साया दे दे, ऑक्सीजन दे दे, फल दे दे। एक घोड़े की ज़िम्मेदारी है कि वो मैदान जंग में हो या सफ़र में हो तो अपने मुसाफिर को अपनी मंजिल तक पहुँचा दे। गाय भैंस की ज़िम्मेदारी यह है कि वो दूध दे दे, वो बच्चे दे दे, नस्लें आगे बढ़ जाएँ जानवरों की। और भी बहुत सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी, लेकिन इंसान की ज़िम्मेदारी इतनी छोटी सी नहीं है। इंसान की ज़िम्मेदारी वो है कि जो फरिश्ता नहीं उठा सकता, इंसान की ज़िम्मेदारी वो है कि जिसके लिए कुरान ने कहा कि आसमान नहीं उठा सका, ज़मीन ने इनकार कर दिया, पहाड़ों ने इनकार कर दिया, इन्ना अरदना अमानता अलसमावात वल अर्द वल जबाल फ़अबैना यहमिलना वहमलहा अलइंसान फ़अबैना यहमिलना वअशफ़क़ना मिन्हा वहमलहा अलइंसान, कि हमने अमानत को, अमानत यानी ज़िम्मेदारी। अब वो अमानत के मिसदाक बहुत सारे हैं, कौन कौन सी अमानतें हैं उसकी तफसीर से रवायात में बहस की गई है, लेकिन हमने इस ज़िम्मेदारी को देना चाहा, दिया, पेश किया आसमानों के सामने, पहाड़ों के सामने, ज़मीनों के सामने, उन्होंने इनकार कर दिया और डर गए। अब ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं हो कि अल्लाह ने कोई लाके पेश किया और पहाड़ के नहीं नहीं मैं नहीं लेता, यानी इसका मतलब यह है कि पहाड़ के वजूद में यह सलाहियत नहीं है कि उसके पास कोई ज़िम्मेदारी दी जाए तो कोई बड़ी ज़िम्मेदारी ले ले। पहाड़ की ज़िम्मेदारी इतनी हो सकती कि ज़मीन ठहरी रहे, लर्जिश पैदा ना हो, कुछ ख़जाने दे दे, कुछ केमिकल्स दे दे, कुछ जो है केमिकल असरात के नतीजे में कुछ कीमती कोयला दे दे या और दूसरे पत्थर दे दे, यह दे सकता है, लेकिन बड़ी ज़िम्मेदारी पहाड़ नहीं ले सकता, ज़मीन बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं ले सकती। आसमान की जिसकी वसतों की कोई हद नहीं है, इंसान तो नहीं समझ पाया कम से कम कि कितनी वसतें हैं, वो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता जो इंसान ले सकता है। वह हमला हल इंसान, इंसान ने यह ज़िम्मेदारी ली। अब ज़ाहिर कौन से इंसान ने ज़िम्मेदारी ली? गैर ज़िम्मेदार लोग तो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते, अगरचे हर इंसान में अल्लाह ने यह सलाहियत रखी है। किसी भी मजहब में, किसी भी दीन में, किसी भी एरिया में पैदा होने वाला इंसान हो, ये सलाहियत सब में है, लेकिन नहीं ले सकता, हर एक नहीं लेता है। गैर ज़िम्मेदार लोग ज़िम्मेदारियाँ नहीं ले सकते हैं, लेकिन तारीख में हमेशा ऐसे लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियाँ ली हैं, और वो ज़िम्मेदारी लेने वाले तारीख में हमेशा बाकी रहते हैं। हम अपने दौर में जिसको याद कर रहे हैं, जिसके फ़िक्र को, जिसके अफकार को गहराई से थोड़ा समझना चाहते हैं, थोड़ी सी गहराई से अपने और आपकी हद तक, वरना मुमकिन है कि बहुत सारी चीज़ें हम जैसे लोग नहीं समझ पाएँ ऐसे अजीम इंसानों की ज़िंदगी में, इमाम खुमैनी और रहबर इनकलाब जैसे इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन जो हम समझना चाहते हैं वो ये है कि एक इंसान जिसने ज़िम्मेदारी ली, और ज़िम्मेदारी को चाहे वो इनकलाब के पहले की ज़िम्मेदारियाँ हों, चाहे इमाम खुमैनी के 12 साल जो है ईरान से बाहर निकाल दिया गया, ईरान से बाहर निकालने के बाद जो ज़िम्मेदारियाँ थी, उस इनकलाब के रमक को बाकी रखना, उसकी रूह को ज़िंदा रखना, उसके पैगामात को बाकी रखना, जबकि पाबंदियाँ थीं, शहर बदर किया जा रहा था, मिंबर पर जाने पर पाबंदी थी, दर्स दुरूस पर पाबंदी थी, लेकिन जब एक ज़िम्मेदार इंसान होता है तो उसके ऊपर कितनी

पाबंदियां लगाएं, वो कहीं ना कहीं से अपना अपना किरदार अदा करने के लिए रास्ता तलाश करता है और अल्लाह उसके लिए रास्ते खोलता है। फिर इनकलाब आने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती चली गईं। आम तौर से ये होता है कि कोई बड़ा इनकलाब आ गया तब लोग खुश होने लगते हैं कि भाई अब तो ओहदे हमारे पास आएंगे। ओहदों को लेकर खुश होने वाले लोग और हैं, ओहदों को लेकर जिम्मेदार होने वाले लोग और हैं, और रहबर इनकलाब उनमें से देगी। जहाँ पे फिर जंग पे हुई तो जंग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, पूरे जंग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है रहबर इनकलाब पे होती थी, यानी पूरे जंग का सबसे बड़ा जिम्मेदार डायरेक्ट इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने रहबर इनकलाब को करार दिया हुआ था। तो एक इंसान जो हुकूमत को भी देख रहा है, मुल्क को भी देख रहा है, प्रेसिडेंटशिप को भी देख रहा है, लेकिन जंग के मसाइल को भी देख रहा है। फिर उसके बाद इमाम खुमैनी के बाद उससे भी बड़ी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई कि अब पूरे निज़ाम को देखने की जिम्मेदारी है। और निज़ाम की जब बात आती है तो वलायत फ़कीह की बात आती है तो पहले जहन में तसव्वुर होता है कि ईरान में वली फ़कीह थे, लेकिन वो इंसान जो ईरान में वली फ़कीह था वो सिर्फ ईरान के लोगों का ज़िम्मेदार नहीं था, वो फ़िलिस्तीन का भी ज़िम्मेदार था, वो इराक़ और सीरिया जिनसे जंग हो चुकी थी उनका भी ज़िम्मेदार था। वो इराक़ जो सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क रहा है, 8 साल जंग की हुई है, आज वो इराक़ ईरान से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, यानी बॉर्डर के लिहाज से तो नज़दीक है ही है, लेकिन बहुत सारे मसाइल में हम पूरे इराक़ की बात नहीं कर रहे हैं, सारे इराक़ के सारे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी इराक़ की बड़ी तादाद में अगर हम 50 लाख अगर करोड़ों ना कह सकें तो 50 लाख की तादाद में कह सकते हैं कि जो आकर इस इनकलाब की मीरास को संभाले हुए, वो इंसान जो ईरान में ज़िम्मेदार बनाया जा रहा है वो लबनान का भी ज़िम्मेदार है, लबनान के मोमिनीन का ज़िम्मेदार है, और दुनिया भर के मजलूमों का ज़िम्मेदार है, दुनिया भर के मजलूमों की आवाज़ का ज़िम्मेदार है, वो इस्लाम का ज़िम्मेदार है, वो शियत का ज़िम्मेदार है, वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की मीरास का ज़िम्मेदार है। लेकिन उस ज़िम्मेदारी को फिर किस तरह अदा किया, पहले जैसे अर्ज़ किया गया किसी इस गुफ्तगू में इसमें या किसी और सिलसिले में कि आमतौर से लोग यही समझ रहे थे कि एक आलिम है, एक अमामा लगाए हुए सर पे, तो क्या क्या करेंगे, लेकिन वो पूरे मुल्क में तालीम के भी ज़िम्मेदार हैं, यानी पूरे मुल्क के एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर से बेहतर करने में, और 37 सालों में इतना बेहतर कर दिया कि आज पूरी दुनिया हैरत में है कि कैसे जो है ये मुमकिन हो सकता है कि एक इंसान इतनी जल्दी इतनी बुलंदी तक ले जाए। चूँकि प्रोपेगेंडा तो बहुत ज़्यादा किया गया था, लेकिन अब पूरी दुनिया देख रही है, लोग तो ये सर समझ रहे हैं चलो मिसाइल बना लिया होगा, कुछ यूरेनियम को इनरिचमेंट कर लिया होगा, लेकिन नहीं, हर मैदान में जाके जब देखते हैं तो इंसान हैरत करता है। तो ये कुछ ऐसे खुद ब खुद नहीं हो गया, या ऐसा भी नहीं हो गया कि मसलन खातमी जैसे लोग या रूहानी जैसे लोग या मसलन आने वाले प्रेसिडेंट ने ये सब कुछ किया है, नहीं, ये सारी जिम्मेदारियाँ रहबर इनकलाब की रही हैं। और रहबर इनकलाब बाकायदा जहाँ डांटना पड़ता था डांटते थे, इन्हीं सदर लोगों को सख्ती से बात करनी होती तो सख्ती से बात करते थे, और जहाँ समझाना होता तो समझाते थे, इसमें कोई भी तकल्लुफ नहीं करते थे, और कहते भी थे कि हम कोई डिप्लोमेट थोड़ी नहीं है भाई, हम तो एक इनकलाबी इंसान है, हम तो एक मुसलमान है, एक शिया हैं। तो बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के जो है, अब जितनी भी आपको तरक्कियाँ आपको नज़र आ रही हैं ईरान के अंदर, जो अभी पूरी दुनिया हैरत से देख रही है, यानी वाकई हैरत से देख रही है, वहाँ की ख़वातीन, वहाँ के नौजवान, वहाँ का एजुकेशनल सिस्टम, वहाँ की पढ़ाई, वहाँ के जो है सेहत, तालीम, शहर की साख्त, वो सारी चीज़ें जो दिख रही हैं, उन सब के पीछे एक ज़िम्मेदार इंसान था जिसने हत्ता साल के नाम रखने में भी रियायत की कि नाम क्या रखा जाए। मसलन कुछ साल नाम रखे गए साल रसूल आदम, यानी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि, पूरे साल भर रसूलुल्लाह के ऊपर लिटरेचर लिखे गए, किताबें लिखी गई, कमी महसूस हो रही थी कि रसूलुल्लाह की ज़िंदगी को सही तरह से नहीं समझा गया, तो पूरे साल भर पूरा जो है थिंक टैंक, जितने भी राइटर्स थे, जितने भी स्कॉलर्स थे, वो सब के सब साल भर रसूलुल्लाह के लिए काम करते रहे। एक बड़ा ज़खीरा, एक बड़ा लिटरेचर तैयार हुआ। एक साल को साल का नाम रखा गया साल अमीरुल मोमिनीन, साल इमाम अली अलैहिस्सलाम। तो पूरे साल भर इतनी बड़ी बड़ी तहकीकात हुई, बड़ी बड़ी जिल्दों में किताबें छपी, ताकि अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू, अभी मेरे पास भी मौजूद है शायद 20-22 जिल्द में, इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वो सारे पहलू जो इस पर कभी भी गुफ्तगू नहीं हुई थी, किताबों के कहीं कोने वोने में पड़ी हुई थी कहीं चीज़ें, लेकिन उस पर बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से गुफ्तगू नहीं हुई थी। फिर वही रहबर इनकलाब ने जब महसूस किया कि ज़रूरत है, तो कई साल तक जो है इकोनॉमी, इक्तसाद, मेहनत, कोशिश, जवानों के लिए
ये सारे नाम

रखते रहे, और ये नहीं फकत नाम रख के ऐलान कर दिया, बल्कि उस पर फिर साल भर फॉलो करना, साल भर उसको आगे बढ़ाना, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, लोगों के लिए, लोगों के अखलाक के लिए, लोगों की ज़हनी तरबियत के लिए, लोगों के शऊर को बुलंद करने के लिए बहुत ही अहम मसला है कि मुसलसल रहबर इनकलाब की तकरीरें, चूँकि हम लोग बहरहाल सुनते रहे वहाँ पर रह के, और ये तौफीक रहती थी जो अभी बहरहाल यहाँ आने के बाद इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, कोशिश रहती है फिर भी कि हर मुनासिब मौके पे दो चार छः दिन बाद, कभी दूसरे दिन, कभी पाँचवें दिन, कभी आठवें दिन रहबर इनकलाब की एक बड़ी तकरीर होती थी। उसमें किन पहलुओं पर तवज्जो की जाती थी, जिसमें एक बहुत ही अहम पहलू होता था कि लोगों को बेदार करना, लोगों को आगाह करना, लोगों को आलमी मसाइल से आगाह रखना, लोगों को सिर जो है वो रोटी और कपड़े और मकान में उलझा के नहीं रखना, बल्कि बड़े मसाइल कौम के सामने रखना ताकि वक्त पे वो काम आ सकें। और वो अभी दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से रहबर इनकलाब ने अपनी तकरीरों के ज़रिए से लोगों की तरबियत की थी, यानी इंसान हैरत में, तो कैसे हो सकता है कि इतने बमों और इतने असलहों के दरमियान में एक कौम ऐसे खड़ी हो, बच्चे खड़े हों, जवान खड़े हों, औरतें खड़ी हों, एक दो दिन नहीं पूरे पूरे ढाई महीने तक खड़ी हों। तो ये उस एक इंसान की ज़िम्मेदारी के अदा करने का नतीजा है जो अभी हम देख रहे हैं। इस मौजू पर बहुत ज़्यादा सोचा जा सकता है, बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन तय ये है कि बहरहाल कुछ पहलू को हम मुख्तसर तौर पर बहस करें ताकि एक बाप खुले इंसान के सोचने के बारे में, और एक इंसान के बारे में, एक इंसान की अजीम ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा, थोड़ी सी गहराई के साथ सोचा जाए। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि एक इंसान की फजीलत बयान की जाए, बल्कि इसलिए है कि इन उसूलों की बुनियाद पर हम सब अपने आप की तरबियत करने की कोशिश करें, और अपने शहीद को हम याद रखें, तो इसलिए याद रखें ताकि शहीद के उस मिशन को आगे बढ़ा सकें। और शहीद के मिशन को कभी भी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जब तक कि उन जिम्मेदारियों के एहसास न हो जिसको रहबर इनकलाब अदा करके गए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको बेहतर तौर पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझने की तौफीक इनायत फरमाए। हज़रत इब्राहिम की वो दुआ जो सूरह बकरा में मौजूद है कि अरना मनासिक ना परवरदगारा, हमारे वज़ायफ़ को, हमारी ज़िम्मेदारियों को, हमारे मनासिक को हमें दिखा दे, हमें क्या करना है तू ख़ुद बता, तू ख़ुद रहनुमाई फरमा। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हम सबको जो है अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाए, इस लायक समझे कि हमको ज़िम्मेदार बनाए, और इस लायक समझे कि शहीदों के और अम्बिया के और औलिया इलाही और आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के मिशन में अपने आप को शरीक रखने और उसमें अपना किरदार अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिही।

ज़ईफ थे, ज़ईफ़ी का दौर है उनका। आशूर के दिन जब अस्हाब हुसैन जंग लड़ रहे थे, एक ही बात दीगर शहीद हो रहे थे, जॉन भी आते हैं इमाम के पास कि इमाम हमें भी इजाज़त चाहिए कि हम अपनी जान आपके कदमों में निसार करें। इमाम ने जॉन की खिदमत को देखा तो कहा कि जॉन तुमने जो है मेरे ख़ानदान की, बाबा की, भाई की, हमारी खिदमत की है, इतने साल यहाँ तक तुम आए हो, हम नहीं चाहते हैं कि इस मुसीबत में तुम मुब्तला हो। इमाम उस पॉइंट ऑफ व्यू से मना कर रहे हैं। जॉन ने इसरार किया, इमाम ने इनकार किया, यहाँ तक कि जॉन चूँकि जानता था मांगने का भी एक तरीक़ा होता है, आपको मालूम होना चाहिए किससे आप मांग रहे हैं, इमाम के नफ्सियात और साइकोलॉजी से वाकिफ़ था वो। लिहाजा उन्होंने अपना ऐसा तरीक़ा अपनाया कि वो जानता था कि इमाम इनकार नहीं करेंगे। आखिर में जॉन ने कहा कि मौला हम जानते हैं मेरा रंग आपकी तरह नहीं है, मेरा कबीला मेरा आपका कबीला नहीं है, मैं एक खिदमत गुज़ार हूँ, नौकर हूँ, मेरे बदन से पसीने की बुदबुद भी आती है, मेरा खून आपकी तरह नहीं है पाक और पाकीज़ा, लेकिन जब तक मेरा खून आपके खून से जाके नहीं मिलेगा मुझे इत्मीनान नहीं होगा। हुसैन के लिए अब कोई गुंजाइश न थी कि इनकार करें, और जॉन को इजाज़त देते हैं। लेकिन ये जो जुमले थे जनाब जॉन के, जिनके शहादत के बाद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते हैं, जॉन के लाशे पर वो जुमले लग रहा था कि अभी भी वो कान में आ रहे हैं, इसलिए हाथ को बुलंद करने के बाद कहते हैं खुदावंदा अल्लाहुम्मा बय्यिज वजहू, खुदावंदा इसके चेहरे में नूर पैदा कर दे, इसके जिस्म में खुशबू पैदा कर दे, खुदावंदा इसको मेरे जद के साथ महशूर करना। बस जॉन से कहेंगे कि तुम्हारी कितनी अजमत है कि एक सैयद शबाब अहल जन्ना इमाम जो है तुम्हारे लाश पर आके दुआ करता है, लेकिन जब हुसैन का आखिरी वक्त आया है वहाँ कोई सिराने दुआ करने के लिए नहीं था, बस एक बहन दूर से देख रही थी मंजर को, हाथ को बुलंद करती है, कहती है अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान। اللعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدا بند اس خدمت قبول خر فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما خدا بند عالم اسلام میں صلح اور امن کی فضا پیدا کر دشمنان اسلام کی اس تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما امام کے ظہور میں تعجل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم